0: Allá que dicho no.
1: Es como que a Harem me dijo que en faro está se.
0: ¿Eh? ¿Qué ve?
1: Ey, eres Adimiharos a Hanna faro de Kamudati. Rite, Adi a Harem girlfriend aquí faro de Kamagabul Kureveti.
0: Harem que girlfriend. Saifge.
1: Faro.
0: Harem a Ruliade, a Hanna faro de Kamudati. Ekam saifeng kiam peshpo ana aring nam mistake ana rangli saifo ana abu dis farhot kiya a
2: ki kurang aring hotel ro sam me ke ti ai
3: ki bar nanam suna ki ve सुना के बाहर मल्ला दिमाग में बुनी में हरने को ना ना में एक मुक
2: रोज़ा कहीरा देर को रहने ही बरे ने
3: सुना ने तीम कहीरा देर वाबर सुना इंगे सुना बुनी में ना इंगार से मिक मात दिमाग एक ही कुरी मतल दिन ये फिलहाल इन त्यों नहीं, देर नहीं तो तीन कंधों को रख, आरे सुना है कि मैं बेनो ही बोलूँ, सुना तेरी, आर ना दूर हुआ,
2: मैं आर कायरा यंग होरी है चंगेंगे चेन, कायरा मैं आर हारे ने बेन में नुमाने, कायरा बेनो वाणी, कायरा के मामा, रुसा मिस एक तब विष्णु बातल को फी मेनो।
3: हरिंग विष्णु हो रखा है। सुना कहाँ तुमने कहा को?
2: मेरे रेस्टोरेंट अंग हरिंग के लिए ये वाह को बुना करनो।
3: आलिया तक का वाह कता। हरिंग तक का वाह तो सुना कबूल करेंगे। बुने बदलते थे।
2: रुझान के वाह का।
3: दें। की बे तीन तीन दने। Please, Suna. Mither roti na hada pala. Anna Suna no laulam varang unduku varang undagu. Kaira gel dana kama biruga hari haswa mandaru. Suna anna gelding ule kama isasnu koddi ba Suna. Please, bune pala. तीन अंदर सुनो फावर नहीं था
2: उफ़ फलन नहीं कीने कायरा यार उस हमारो ला आहरिंग उफ़ावा नहीं
3: सुना है भैया की बेटी हिंटे उड़ने सुना कम में गोता का दिमाग यस अरे बहन में सुना है अरे सुना दो करने नहीं लाना मैं यकीन कुब्बा
2: रोज़ हम गलोई पंगा हरे शक के नुकुरा एकम Kaira
3: सुना दिके वालो एक बबस शकुनो को बला सुना
2: माँ दंग हरें कायरा गाते दांता
3: please आधे बला हरें के दर पुला हरें दो कोशे नुलान कायरा एंगे मने एवं बस अन्ना नुलान नुले बेने सुना मैं यकीन के मैं को हरें बेन में कुरी है दाशे हित को कितम मेरे होना kita mebehening elias suna haring gatu hipa tang hibar den huya haring hibar quran
2: rusa sorry dere kure bunim
3: sorry yo
2: den do aku sare no sam dere wa kal kam no quran
3: huwa
2: huwa
3: ende ja bodu sare gatu hunda dibal inge apodos